0: जाता है। ये तरीका नरम गोश्त और कांटों वाली मछली को खोलने के लिए बेहतरीन है।
1: यह तरकीब चार अफराद के लिए है। आपको दरकार होंगी चार अदद सार्डिन मछलियाँ, एक चाय का चम्मच सोया सॉस, थोड़ा सा पोटैटो स्टार्च यानी आलू का नशास्ता और एक खाने का चम्मच तेल। सॉस बनाने के लिए आपको चाहिए दो खाने के चम्मच सोया सॉस, दो खाने के चम्मच चीनी और दो खाने के चम्मच पानी। सजावट के लिए जापानी मिर्च के 25 पत्ते तैयार रखिए या फिर पिसी हुई जापानी मिर्च सानशो इस्तेमाल कीजिए। चावलों के लिए आपको ज़रूरत होगी 300 ग्राम कच्चे चावल और 430 मिलीलीटर पानी की, या अगर आप चाहें तो 600 ग्राम पके हुए चावल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जापानी अंदाज के चावल पकाने के लिए तीन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, चावल धोना, पानी की मकदार और पकवाई का दुरानिया। तो आइए आगाज करते हैं कि चावल कैसे धोए जाएं। हमेशा चावलों को किसी छलनी में डालकर धोइए।
0: एक बर्तन में पानी भरकर उसके अंदर एक छलनी रखिए। चावल साफ करने के लिए उन्हें तेजी से 5 मर्तबा हिलाइए ताकि मिट्टी और महक वगैरह साफ हो जाए। उसके बाद फौरन छलनी बाहर निकालकर पानी फेंक दीजिए। फिर अपनी उंगलियों को फैलाते हुए इस अंदाज में चावलों को मिलाइए जैसे आप पीटने वाला कोई चम्मच इस्तेमाल कर रहे हों।
1: चावलों में उंगलियां घुमाते हुए दानों को एक दूसरे के साथ रगड़ते रहें। इस अमल को जापानी में तोगू कहा जाता है। चावलों को 20 मर्तबा मिलाने के बाद छलनी को दोबारा पानी भरे बर्तन में रखिए और निस्बतन आहिस्तगी से हिलाते हुए साफ कीजिए। पुराना पानी फेंक कर नया भर लीजिए। अब छलनी को पानी भरे बर्तन से निकाल लीजिए।
0: छलनी को किसी छोटे बर्तन पर रखकर तमाम पानी निकल जाने दीजिए। घो के चावलों से निकलने वाला पानी अभी भी गदला होगा, लेकिन चावलों को दोबारा पानी से निकालना काफी है। अहम बात यह है कि चावल साफ करने का अमल तेजी से मुकम्मल किया जाए, क्योंकि अगर आप इसमें कुछ ज्यादा वक्त लगाएंगे तो चावल भुरभुरे हो जाएंगे।
1: 10 मिनट के बाद जब पानी निकल जाए तो चावल किसी बर्तन में डालिए। अब पानी की दुरुस्त मकदार का इजाफा कीजिए और 30 मिनट के लिए चावलों को पानी में भिगो दीजिए।
0: अब बर्तन पर ढक्कन रखकर दरमियानी आंच पर पकाइए। पानी में उबाल आने के वक्त से पकवाई के दौरानिये का ख्याल रखना जरूरी है, लिहाजा देखते रहिए कि पानी में उबाल किस वक्त आ रहा है। ढक्कन उठाने के बजाय आवाज या देगची से निकलने वाले बुखारात से अंदाजा करने की कोशिश कीजिए।
1: जब पानी में उबाल आ जाए तो आंच धीमी कर दीजिए और टाइमर पर वक्त सेट करके ठीक 12 मिनट तक पकाइए।
0: वक्त पूरा हुआ, आइए अब आंच बंद कर देते हैं। अभी ढक्कन को मत उठाइए और 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस अमल को जापानी में मुराशी कहा जाता है। चावल इस अमल के बाद ही तैयार होते हैं।
1: जब चावल दम पर हो तो उस दौरान सार्डिन तैयार कर लीजिए। सार्डिन को कटिंग बोर्ड पर रखकर इसके छिलके उतारने से आगाज कीजिए। मछली के बैरूनी हिस्से पर दुम से सर की जानिब छुरी चलाते हुए इसके छिलके उतार लीजिए।
0: सार्डिन मछली जितनी ज्यादा ताजी होगी उतने ही इस पर छिलके मौजूद होंगे। उसके सर को अपनी उंगलियों से पकड़ लीजिए और मछली को पलटते हुए तमाम सतह से छिलके उतार दीजिए। उसके बाद सर को उसकी निचली तरफ से काट दीजिए। अब हम इसे बटरफ्लाई अंदाज में खोलेंगे।
1: मछली के पेट की निचली जानिब एक सख्त सी जगह होती है, लिहाजा छुरी को उसके मुखालिफ समत तिरछा करते हुए इसे काटें। यहां से शिगाफ बनाते हुए मछली की दुम की जानिब मौजूद सुराख तक ले जाइए। अब इसकी अंदरूनी आंतों को साफ कर लीजिए। चारों सार्डिन मछलियों को ऐसे ही साफ कीजिए। एक प्याले में काफी ज्यादा पानी डालकर मछली को धो लें। दरमियानी कांटे और पसलियों में अभी कुछ खून लगा रह गया होगा, उसकी वजह से मछली में बसांत पैदा हो सकती है। इसलिए

0: किसी डिश के ऊपर फैलाना भी बहुत अच्छा तासुर देता है। मिर्च के पत्तों को सार्डिन काबायाकी के ऊपर डालिए और लीजिए, डिश तैयार है।
1: 今年の土用の牛の日には、ぜひ皆さんもイワシのかば焼き
2: を食べて、ラバサールベルケデンパサーディンカバ焼き खाना आपको गर्मी की शिद्दत से महफूज रखने में मदद देगा। और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट कैच ऑफ द डे का, जिसमें हम आपको खाना पकाने से मुतालिक मालूमात फराहम करते हैं। आज हम बात करेंगे दोयो दौरानिये के दोयो नो उशी नो ही, जिसे बैल का दिन भी कहा जाता है। वैसे गुल साहब, जब आप ये नाम बैल का दिन सुनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है?
0: सोफिया, मेरा ख्याल है कि ये मौसम गर्मा और उनागी यानी बाम मछली से मुतल्लिक है, क्योंकि हर साल इस दिन में उनागी रेस्तरानों और डिपार्टमेंट स्टोर्स के बाहर में बड़ी तवील कतारें देखा करता हूं।
2: बजा फरमाया गुल साहब आपने, लेकिन दर हकीकत दोयो दौरानिया बैल का दिन महज मौसम गर्मा में नहीं होता।
0: अच्छा।
2: 1872 तक जापान में वक्त का अंदाजा लगाने के लिए शमसी कमरी कैलेंडर राइज था। उस कैलेंडर में हर मौसम यानी बहार, गर्मा, खिजा और सरमा के आखिरी 18 दिनों को दोयो कहा जाता था और उसे आने वाले मौसम की तैयारी का दौरानिया ख्याल किया जाता था।
0: सामिन, मौसम गर्मा का दोयो साल का गर्म तरीन वक्त होता है। तकरीबन 250 साल कबल एदो दौर में गर्मी की शिद्दत से होने वाली थकान को दूर करने और दोयो दौरानिया के डे ऑफ द ऑक्स यानी बैल के दिन पर होने वाली बीमारी से बहाली के लिए कुछ सेहत बख्श इकदाम करना काफी मारूफ हो गया था। जापानी हरूफ तहजी के हर्फ ऊ से शुरू होने वाली किसी चीज को खाना भी अच्छा समझा जाता था, क्योंकि दी ऑक्स या उशी भी ऊ से शुरू होता है। और हुआ कुछ यूं कि फिर उस दौर में उनागी का बया की प्याला खाना बहुत मकबूल हो गया। गाड़ी का बया के सॉस का नमकीन और मीठा जायका उनागी के साथ जबरदस्त लगता है। ये गजाइत से भरपूर होने के साथ साथ उनागी की मट्टी जैसी महक को भी दूर करता है। आजकल जब लोग उनागी के बारे में बात करते हैं तो कबायाकी फौरन जहन में आता है।
2: उनागी में हयातीन यानी विटामिन की बड़ी मकदार मौजूद होती है और जापानी अफराद आला दर्जे की गजाइत के हामिल एक डिश के तौर पर गुज़िश्ता 1000 साल से इसे खा रहे हैं।
0: जी, आज के दौर में भी बहुत से गजाइत भरे खाने दस्तियाब हैं, लेकिन जापानी अफराद अभी भी मौसम गर्मा में उनागी कबायाकी खाने के मुंतजर रहते हैं। उनागी काबायाकी जापानी अफराद के लिए एक रिवायत बन गया है।
2: सामिन, अभी आप प्रोग्राम सुन रहे थे जापानी खाने पकाएं। उम्मीद है आप आइंदा भी हमारे साथ रहेंगे।

0: गुल वैसे वतनाबे साहिबा ने बड़ा अच्छा मुतबादल इस्तेमाल किया है बा मछली का, क्योंकि सार्डिन भी गजाइयत से भरपूर होती है।
1: जी सोफी, और आपको तो पता ही है कि बाम कितनी महंगी होती है और सार्डिन तो इंतहाई मुनासिब कीमत में मिल जाती है और जापान में रोजमर्रा के खानों में इस्तेमाल होती है, इसलिए तो सारा साल दस्तियाब होती है।
0: गुल और दूसरे कई ममालिक में भी इंतहाई आसानी से दस्तियाब होती है।
1: अच्छा ये बताया कि अगर ना मिले तो फिर आज की डिश बनाने के लिए कौन सी मछली इस्तेमाल की जाए?
0: कोई बात नहीं, वही मछली यानी के बाम इस आसानी से अगर आपके मुल्क में दस्तियाब है तो इसे इस्तेमाल करें, जिसके नेमल बदल के तौर पर सार्डिन को इसके की डिश तैयार की गई है।
1: अच्छा, फिर तो बड़ी ये बेहतरीन सी डिश बन जाएगी ना।
0: बिल्कुल वही डिश बन जाएगी। और गुल अगर दोनों में से कोई भी ना हो तो कोई भी दूसरी मछली मिसाल के तौर पर हॉर्स मैकरल वगैरह भी इस्तेमाल की जा सकती है।
1: अच्छा चले, मछली का मसला तो हुआ हल
0: जी।
1: और चावल भी आप हमेशा बताती हैं कि जो चावल भी आप सामिन के इलाके में आसानी से दस्तियाब हो उसे थोड़ा सा नरम करके पका लें,
0: बिल्कुल
1: खिचड़ी के अंदाज में। तो ये ठीक ठीक सबक बताया ना मैंने आपको,
0: खिचड़ी के अंदाज में नहीं थोड़ा सा नरम,
1: थोड़ा सा नरम कर लिया। खिचड़ी ज्यादा नरम होती है क्या?
0: खिचड़ी ज्यादा नरम हो जाएगी। इतना नहीं,
1: चलिए।
0: इसके अलावा गुल पोटैटो स्टार्च ना मिले तो कॉर्न स्टार्च से भी काम चल जाएगा। मैं भी अक्सर पोटैटो की जगह कॉर्न स्टार्च इस्तेमाल कर ही लेती हूँ।
1: अच्छा चलिए, ये तो हो गए जनाब नेमुल बदल अज्जा।
0: बिल्कुल,
1: और बाकी अज्जा तो हर जगह बहुत आसानी से दस्तयाब होते हैं, तो हमारे सामने ये डिश मेरा ख्याल है कि बना ही लेंगे अब तो।
0: बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। एक चीज भूल गए आप।
1: अच्छा कौन सी?
0: सानशोया पेपर लीव्स।
1: ओहो ये तो भूल ही गया। अच्छा अगर इसे ना भी सजाया जाए तो काम तो चल जाएगा ना?
0: वो तो ठीक है, लेकिन कुछ हर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी खुशबू से किसी डिश में चार चांद लग जाते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे पुदीना धनिया वगैरह हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। मछली के साथ सोया एक हर्ब होता है जो हमारे यहाँ और कई मुल्कों में पाया जाता है, और मछली के साथ इसका बड़ा अच्छा इम्तिजाज होता है।
1: अच्छा यानी आप कहना चाह रही हैं कि अगर आज की तरकीब में सोए को सांशो की जगह डाला जा सकता है।
0: जी बिल्कुल, और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है। और गुल मुझे उम्मीद है कि आप हमारे सामने गर्मियों में ये डिश जरूर बनाएंगे।
1: जी अगर बनाए तो हमें जरूर बताइएगा।
2: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज पर सुनी जा सकती हैं। इंटरनेट पर आप हमारे प्रोग्राम nhk.jp/urdu पर सुन सकते हैं।
3: जी सामाई, प्रोग्राम आपने सुना और सुनकर यकीनन आपका बेखाबाया के दोन खाने का दिल चाहने लगा होगा और मुंह में पानी भी आ रहा होगा। वैसे जब हम छोटे थे तो अम्मी कहा करती थी कि मछली की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में मछली कम खानी चाहिए। और वैसे भी गर्मियों में गोश्त या मछली से ज्यादा सब्जियां या हल्के फुल्के खाने खाने को दिल चाहता है। लेकिन जनाब जापान में मछली हर मौसम में यकसा मकबूल है और मौसम के मुनासबत से इन्हें खाने का एहतमाम किया जाता है। जैसे अनागो खाबाया के दोन, जिसे मौसम गर्मा के एक खास वक्त में खाया जाता है और मौसम गर्मा की खोई हुई ताकत को बहाल किया जाता है। इसी तरह से साम्मा या पैसिफिक सौरी मछली को मौसम खिजा में खाया जाता है। इसकी वजह यह समझ में आती है कि इन खास दिनों में ये मछलियाँ अपनी गजाइत और जायके के उरूज पर होती हैं। तो आप भी अपने इलाके में दस्तियाब अज्जा से खबैया के दोन जरूर बनाएं और मौसम गर्मा की थकान को भगाएं, और हमें भी बताएं कि आपका तजुर्बा कैसा रहा। इसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है nhk.jp/urdu। और अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला खवानो का कोन्निचिवा नमस्कार।
1: आवाज की दुनिया के सभी साथियों को रोहिणी रमन का भी प्यार भरा नमस्कार और कोन्निचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब।
0: रोहिणी जी, देखिए अभी मंगलवार को जापान एक बार फिर महाभूकंप की चपेट में आ गया ना?
1: हाँ वायला जी, जापान में रहते हुए हमें कई बार भूकंप के झटकों को झेलना पड़ता है, लेकिन अगर इतनी अधिक तीव्रता का भूकंप आ जाए तो इसके लिए तैयारी करके रखना तो ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से इससे उबर पाना कठिन हो जाता है।
0: जी हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। और जब तक ऐसी कोई स्थिति हमारे सामने नहीं आती, तब तक हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि भूकंप ग्रस्त इलाकों के लोगों पर क्या गुजर रही होगी। हमारी तो बस यही प्रार्थना है कि अब और जानमाल का नुकसान ना हो और सभी की दिनचर्या वापस पटरी पर लौट आए।
1: जी, और अगर हमारी तरफ से कोई सहायता या योगदान हो सकता है तो हम भी मदद का हाथ आगे बढ़ाकर आपदा के शिकार लोगों का काम आए।
0: जी हाँ, और देखिए रोहिणी जी, भूकंप के बाद भारत के लोगों यानी हमारे शुभ चिंतकों ने हमें फेसबुक पर बहुत सारे संदेश भेजे हैं, तो आइए सबसे पहले उन पर ही क्यों ना एक नजर डाल ली जाए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो अमित गुप्ता जी लिखते हैं कि अनिश्चितताओं के क्षणों में हमें याद दिलाया जाता है कि मानवता एक परिवार है। मेरी हार्दिक प्रार्थनाएं कुमामोतो के हर व्यक्ति के साथ हैं। ईश्वर हर जीवन की रक्षा करे, हर दिल को आराम दे और इस कठिन समय का सामना कर रहे सभी परिवारों को शक्ति दे। आशा भय से ऊपर उठे, साहस हर चुनौती पर विजय प्राप्त करे और शांति जल्द ही लौटे। सभी के लिए सुरक्षा, उपचार और उज्जवल दिनों की कामना करता हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं कुमामोतो जापान के साथ हैं।
1: बहुत ही बढ़िया संदेश है, बिल्कुल दिल से निकली दुआ लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपकी प्रार्थना जरूर भगवान सुनेंगे। इनके अलावा किरण कुमार गोहिल, लाल बाबू पांडे, शेरा सिंह, तेग सिंह पनवर, सी के किंथोली, डेनी पॉल और सुनील सोमानी ने भी अफसोस जताया है।
0: आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए एक और श्रोता है उमेश कुमार शर्मा जी, वे लिखते हैं कि जापान चूंकि भूकंप क्षेत्र में है इसलिए यहाँ पर निरंतर इनका सामना यहाँ के निवासियों को करना पड़ता है, किंतु जापान सरकार की सतर्कता और यहाँ के निवासियों के सहयोग के परिणाम स्वरूप यहाँ के निवासियों के जीवन की रक्षा हो जाती है।
1: उमेश जी, आपने सही कहा कि आपदा के लिए प्रबंधन करके रखना यहाँ सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन नागरिक भी निजी स्तर पर इसके लिए तैयार तो रहते हैं। फिर भी परिस्थितियाँ कभी भी बिगड़ सकती हैं और कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनके सामने हमें नतमस्तक हो जाना पड़ता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए भूकंप के ही संदर्भ में रामकुमार नीरज जी का पत्र है और लिखते हैं कि दक्षिणी जापान में आए 7.1 की तीव्रता के भूकंप ने फिर प्रकृति की शक्ति का एहसास कराया। इतनी भीषण तीव्रता का भूकंप किसी भी देश के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे समय में जापान मौसम विज्ञान एजेंसी द्वारा तुरंत सुनामी संबंधी परामर्श जारी करना और स्थिति सामान्य होने पर उसे वापस लेना, ये दर्शाता है कि जापान की चेतावनी प्रणाली कितनी तेज, वैज्ञानिक और विश्वसनीय है।
1: बिल्कुल।
0: समाचारों से ज्ञात हुआ कि गेंकाई और सेंदाई परमाणु बिजली घरों में किसी प्रकार की असामान्यता नहीं पाई गई तथा विकिरण स्तर सामान्य रहा। 2011 की फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के बाद पूरी दुनिया की निगाहें जापान के परमाणु संयंत्रों पर रहती हैं। ऐसे में इस प्रकार की स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी लोगों का विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ रामकुमार जी, जापान ने अतीत की घटनाओं से सबक लिया है और अब तुरंत ही इस प्रकार की जानकारी प्रेषित कर दी जाती है ताकि लोगों को समय रहते सलाह जारी की जा सके।
0: जी हाँ बिल्कुल। और आगे लिखते हैं कि भूकंप के कारण क्यूशु शिंकानसेन सहित रेल सेवाओं को तत्काल रोक दिया जाना ये दर्शाता है कि जापान में मानव जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। तेज रफ्तार रेल सेवाओं को बिना किसी देरी के रोक देना यात्रियों की सुरक्षा के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है। यही सतर्कता भविष्य में बड़े हादसों को टालने में सहायक बनती है। जापान दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रभावित देशों में से एक है, फिर भी वहां की वैज्ञानिक तैयारी, आधुनिक तकनीक, मजबूत निर्माण मानक और नागरिकों का नियमित आपदा प्रशिक्षण उसे अन्य देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाता है। ये समाचार हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि केवल प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके लिए पहले से तैयार रहना अधिक आवश्यक है। इस प्रकार की समाचार प्रस्तुति न केवल जानकारी देती है, बल्कि पाठकों में जागरूकता भी बढ़ाती है। यही कारण है कि भारत सहित अनेक देशों के हिंदी श्रोता आज भी इस सेवा पर गहरा विश्वास करते हैं।
1: राम कुमार जी, जापान में रहते हुए मुझे भी धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि आपदा से निपटने का तंत्र और व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि कुछ ही दिनों में काफी हद तक जनजीवन सामान्य हो जाता है। पहले से आश्रय स्थलों को चिन्हित करके रखा जाता है, पानी की सप्लाई बंद होने पर पानी के टैंकर तुरंत आ जाते हैं, खान पीने का, शौचालय का, हर तरह का इंतजाम हो जाता है।
0: जी हाँ, वैसे रोहिणी जी, ऐसे समय में फेक न्यूज यानी झूठी जो खबरें हैं वो भी तो कितनी चलाई जाती है ना सोशल मीडिया पर, जो कि गलत जानकारी देती हैं, और इनका मकसद तो यही होता है कि लोगों में डर या चिंता का माहौल बन जाए। तो ऐसे में हमें ये भी तो सुनिश्चित करना होता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी या विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी हासिल करें।
1: यह बात आपने बहुत जरूरी की। शेर वाली एक खबर तो हमेशा चलती रहती है
0: जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
1: कि चिड़ियाघर से शेर भाग गया है। अब तो लोग इस खबर को देखते ही पहचान जाते होंगे कि यह खबर झूठी है।
0: बिल्कुल, और हमेशा चलाई जाती, चाहे दुनिया में कहीं भी कोई भी आपदा हो, ये शेर वाली खबर तो जरूर आती है
1: जी।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बाकी के पत्र भी ले लेते हैं
1: जी।
0: तो ये है SB शर्मा जी का, और ये लिखते हैं कि पिछले रविवार को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम सुना। इस प्रोग्राम में हाथ से बने घरेलू पंखे पर चर्चा सुनी। जापान के हस्त निर्मित खूबसूरत पंखे को हम हिंदी फिल्मों में देखते आ रहे हैं, सभी सुंदर और आकर्षक लगते हैं, पर भारत में हाथ से बने घरेलू पंखों की भरमार है। हर क्षेत्र में तरह तरह के हस्त निर्मित खूबसूरत पंखे देखने को मिलते हैं। इन सभी सुंदर पंखों को मुख्यतः औरतें बनाती हैं। आजकल तो प्लास्टिक के हाथ के पंखों का प्रचलन बढ़ गया है।
1: SB शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत के अनेक हिस्सों में तरह तरह के हाथ से बने पंखे पाए जाते हैं। उनमें उस क्षेत्र की स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल होता है, डिजाइन या आकार भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। भारत में बिजली गुल होना तो आम बात है, तो इस तरह के पंखे मुझे लगता है कि सभी के घरों में होते हैं।
0: हाँ, और हमारे घरों में भी तो होते थे
1: जी।
0: और कुछ तो ऐसे होते थे ना जो 360 डिग्री घूम जाते थे,
1: बिल्कुल
0: बस घुमा घुमा कर चारों तरफ बैठे लोगों सबको पंखा झला जा सकता था ना। और वो भी क्या दिन थे ना, जब बिजली चले जाने पर बाहर आंगन में बैठकर पंखा किया करते थे। वैसे हाथ भी दुख जाता था ना पंखा करते करते।
1: आपने तो पुरानी याद ताजा करवा दी। हाँ, जापान में बिजली तो नहीं जाती, इसलिए घर के अंदर इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन घर से बाहर निकलते समय लोग पंखे को अपने बैग में रख लेते हैं, ताकि बस या ट्रेन का इंतजार करते समय उसका इस्तेमाल किया जाए। तो एक तरह से इस्तेमाल करने का समय और जगह भारत से अलग है।
0: हाँ, और देखिए घर के बाहर ही जरूरत पड़ती है ना यहाँ जापान में, क्योंकि गर्मियों में उमस इतनी ज्यादा होती है कि चाहे आप छाए में ही क्यों ना खड़े हो, पसीने से तर हो जाएंगे। वैसे आजकल तो बैटरी से चलने वाले पंखे भी काफी इस्तेमाल होते हैं, तो इन हाथ से बने पंखों का उपयोग भी घटता सा जा रहा है ना।
1: यह भी सच है। अब लेते हैं अगला पत्र जो लिखा है सुरेश अग्रवाल जी ने। कहते हैं, दिनांक 26 जुलाई के साप्ताहिक कार्यक्रम चेरी के देश से के प्रारंभ में जापान के पारंपरिक आतिशबाजी उत्सव हानाबी मात्सुरी पर प्रस्तुत जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक लगी। एक नियमित श्रोता होने के नाते हानाबी उत्सव के बारे में पहले भी अनेक बार सुन चुका हूँ, किंतु आपकी सजीव, सहज और प्रभावशाली प्रस्तुति हर बार विषय को एक नई ताजगी और आकर्षण के साथ सामने लाती है। यही आपकी प्रस्तुति की विशेषता है कि एक परिचित विषय भी नए अनुभव का एहसास कराते हैं। इस सुंदर एवं उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करें।
0: सुरेश जी, प्रस्तुति पसंद करने के लिए धन्यवाद। जी हाँ, आप इतने वर्षों से इस हिंदी सेवा से जुड़े हैं कि आपको जापान के बारे में बहुत सारी जानकारी है और एक तरह से कह सकते हैं कि आप विशेषज्ञ भी हैं। तो मैं तो अब यही चाहूंगी कि आप एक बार जापान जरूर आएं।
1: बिल्कुल।
0: और इतने वर्षों से आपने जितना कुछ जापान के बारे में सुना है, देखा है, उसे यहाँ आकर स्वयं अनुभव करें। और आजकल भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि एक दिन आपसे यहाँ टोक्यो में और हमारे स्टूडियो में मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
1: जी, उस दिन का इंतजार तो मुझे भी रहेगा, आपको घुमाने की जिम्मेदारी हमारी।
0: चलो ठीक है, ये भी अच्छा रहा। तो अब दोस्तों, समय हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो कृपया नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे

0: से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। वायला जी, हाल में संपन्न हुए फुटबॉल विश्व कप की तो काफी चर्चा रही। जापान में मैच का सीधा प्रसारण तो देर रात का होता था, आपने कोई मैच देखा क्या?
2: भाई उतनी देर रात तो देखना मुश्किल था भाई, और जापान के विश्व कप की दौड़ से निकल जाने के बाद तो मेरी रुचि बहुत ही कम हो गई। पर हाँ, कुछ मैच जो जापान में सुबह के समय प्रसारित हुए ना, तो उन्हें देखने की कोशिश की। तो वैसे आपका कैसे गुजरा ये विश्व कप का दौर?
1: हाँ, मैंने भी काफी मैच देखे और इस दौरान मुझे तो कुछ अभूतपूर्व अनुभव हुआ।
2: अच्छा, ऐसा
1: जी?
2: हुआ?
1: तो उसके बारे में बताती हूँ। तो हमारी बिटिया एक फुटबॉल क्लब का हिस्सा है, तकरीबन एक साल से क्लब के अभ्यास और प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही है। हमें ये लगता था कि अभिभावक की तरह हमारा काम उसे समय पर पहुंचाना और उसकी टीम का हौसला बढ़ाना है।
2: मतलब लगता था, मतलब तो इसका मतलब कि कुछ बदलाव देखा आपने या कोई नई मुसीबत आ गई क्या आपके सामने?
1: अब इसे मुसीबत बोलूं या कुछ और, चलिए वो आप बताइएगा।
2: ठीक है,
1: तो मार्च के महीने में पता चला कि हमारे शहर के सभी फुटबॉल क्लबों के बीच एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें बच्चों के साथ साथ उनकी माओं को भी खेलना पड़ता है।
2: अच्छा।
1: हाँ, मैंने पहले तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे जापानी भाषा थोड़ी बहुत ही आती है और कभी फुटबॉल खेला भी नहीं था। फिर धीरे धीरे इस सोच में पड़ गई कि अगर हिस्सा नहीं लिया तो शायद मेरी बेटी को अच्छा न लगे, बहुत ही दुविधा में थी मैं।
2: अच्छा, तो ये असमंजस तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। मैंने बहुत से विदेशियों से इस दुविधा के बारे में सुना है, बहुत सारे लोग ऐसे तरह तरह के आयोजनों में हिस्सा लेने और ना लेने की कश्मकश में रहते हैं। और सच बताऊं तो स्कूल, ऐसे क्लब या अन्य सामूहिक आयोजनों में हिस्सा लेने का निर्णय उनके लिए ज्यादातर अच्छा ही रहता है। जिस अपनेपन से लोग मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं उसमें भी तो मजा आता ही है ना?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह की दुविधा और बाद में कुछ नया करने का प्रण हम प्रवासियों के जीवन का एक अनोखा हिस्सा है। तो थोड़े समय की कश्मकश के बाद मैंने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की ठान ली।
2: अच्छा
1: जी, मुझे लगा कि जिस दिन प्रतियोगिता होगी उससे एक दिन पहले थोड़ी बहुत तैयारी की जाएगी और अगले दिन जाकर खेलना होगा।
2: तो क्या यही क्रम रहा अभ्यास और प्रतियोगिता का? वैसे मैं अपने अनुभव से ये तो बता सकती हूँ कि यहाँ जापान में सिर्फ एक दिन का अभ्यास तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। कोई भी काम हो, छोटा बड़ा, किसी को भी अंजाम देने से पहले यहाँ के लोग उसकी तैयारी में अपना पूरा समर्पण देने में विश्वास रखते हैं।
1: यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो मार्च के शुरुआत से ही बच्चों के साथ साथ हमारा भी अभ्यास शुरू हुआ।
2: अच्छा
1: जी, सप्ताह में दो दिन 3-3 घंटे का अभ्यास। उस क्लब से जुड़े कई लोगों ने आकर जरूरी गुर भी सिखाए, कई सारे अभ्यास मैच भी खेलने पड़े। अभ्यास के दौरान सारे बच्चे अपनी माओं को किक मारना, गोल करना, ड्रिबल करना सिखा रहे थे। यह बहुत अनूठा अनुभव था। हम माएँ जो बच्चों को कई सारी चीजें सिखाते रहते हैं, अभी उनसे सीखने का मौका मिल रहा था।
2: ये भी खूब रहे।
1: तो एक अभ्यास मैच हुआ बच्चों और उनकी माओं के बीच में। उसमें हमारी टीम आगे चल रही थी और हर एक गोल के बाद वही बच्चे जो कुछ देर पहले हमारे गुरु बने हुए थे रोने लग गए, नाराज होने लग गए। देखा जाए तो बहुत ही मामूली सी बात है, पर गौर से सोचे तो हम उम्र के साथ ही समझ पाते हैं ना कि अगर हमारे शागिर्द कुछ अच्छा करें तो उसमें वाहवाही तो हमारी ही है। तो यहाँ माँ जो हमेशा अपने सुख को बच्चों के लिए त्याग करती है, उनके हाथों होने वाली हार ने सारे बच्चों को झकझोर दिया था।
2: अच्छा।
1: अभ्यास सत्र खत्म होने के बाद क्लब के कोच ने इस सब को समझाया कि अभ्यास सत्र के दौरान अपने दोस्त, माँ या किसी करीबी से उम्मीद रखना कि वह आपको खुश करने के लिए खराब खेलेंगे या एक खिलाड़ी की पहचान बिल्कुल भी नहीं है और सबको इसका ध्यान रखना चाहिए।
2: ये तो खेल खेल में बहुत बड़ी सीख मिल गई बच्चों को।
1: बिल्कुल,
2: बच्चों और माओं के एक साथ मैदान में उतरने से सीखने की संभावनाएं तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, अब ये बताइए कि प्रतियोगिता में हुआ क्या?
1: हाँ, तो हमारी टीम दूसरे नंबर पर आई।
2: अच्छा।
1: हाँ, सब लोग काफी तैयारी के साथ आए थे और हर टीम एक दूसरे का काफी हौसला बढ़ा रही थी। मैच के पहले हिस्से में माएं एक दूसरे से भिड़ती थी और दूसरे हिस्से में बच्चे। फुटबॉल की तकनीकी जानकारी के साथ साथ आपसी तालमेल भी बहुत ज़रूरी रहा मैच खेलने के लिए। अभ्यास के दौरान माँ के गोल मारने से दुखी होने वाले बच्चे जोर शोर से माओं का हौसला बढ़ा रहे थे।
2: अच्छा, तो ये परिवर्तन भी मैच में हो गया।
1: मिल गया, देखने को मिल गया। दर्शक दीर्घा में हर टीम के परिवार और दोस्तों की भी भीड़ थी और वो भी बहुत हौसला बढ़ा रहे थे और एक तरह से बहुत ही अद्भुत और खुशनुमा माहौल था इस प्रतियोगिता का।
2: बहुत बढ़िया।
1: मेरे लिए तो इसमें भाग लेकर खुद मेहनत करके सीखना बहुत ही उपयोगी भी रहा। मेरी बेटी की कितनी मेहनत जाती है हर अभ्यास सत्र में और हर मैच उसके लिए कितना मुश्किल होता है और हमारे हौसले की उसे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, यह बिना भाग लिए मैं शायद ही जान पाती।
2: वो तो है।
1: हाँ, और एक और अच्छी बात हुई, नई जान पहचान भी हुई, तो उसे तो मैं सोने पे सुहागा की तरह देख रही हूँ। तो मिला जुला के यह रहा मेरा फुटबॉल विश्व कप के दौरान फुटबॉल को खेलना और समझना।
2: ये भी खूब रहा। चलिए, दूसरे स्थान पर आने के लिए आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई।
1: शुक्रिया।
2: और देखिए, जापान में चाहे स्कूल की पीटीए हो या खेल के क्लब, माता पिता की भागीदारी, समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना और उसके लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन करना बहुत ही सराहनीय है। और मैं तो खुद भी पीटीए में रह चुकी हूँ तो मुझे पता है।
1: अच्छा,
2: कि इस तरह का होता है।
1: मित्रों, अगर आपने भी ऐसी ही अनोखी प्रतियोगिता कभी सुनी या देखी हो तो पत्र लिखकर हमसे जरूर साझा करें।
2: जी हाँ दोस्तों, और देखिए, बातों बातों में अब समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमें पत्र लिखते रहें। अगर पत्र लिखना एक झंझट है तो फेसबुक पर अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। आपके पत्रों की हमें हमेशा प्रतीक्षा रहती है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का कार्यक्रम, लेकिन फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला कवानों को,
1: रोहिणी रमन को सायोनारा, नमस्कार।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला खवानो का कोन्निचिवा नमस्कार।
1: आवाज की दुनिया के सभी साथियों को रोहिणी रमन का भी प्यार भरा नमस्कार और कोन्निचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब।
0: रोहिणी जी, देखिए अभी मंगलवार को जापान एक बार फिर महाभूकंप की चपेट में आ गया ना?
1: हाँ वायला जी, जापान में रहते हुए हमें कई बार भूकंप के झटकों को झेलना पड़ता है, लेकिन अगर इतनी अधिक तीव्रता का भूकंप आ जाए तो इसके लिए तैयारी करके रखना तो ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से इससे उबर पाना कठिन हो जाता है।
0: जी हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। और जब तक ऐसी कोई स्थिति हमारे सामने नहीं आती, तब तक हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि भूकंप ग्रस्त इलाकों के लोगों पर क्या गुजर रही होगी। हमारी तो बस यही प्रार्थना है कि अब और जानमाल का नुकसान ना हो और सभी की दिनचर्या वापस पटरी पर लौट आए।
1: जी, और अगर हमारी तरफ से कोई सहायता या योगदान हो सकता है तो हम भी मदद का हाथ आगे बढ़ाकर आपदा के शिकार लोगों का काम आए।
0: जी हाँ, और देखिए रोहिणी जी, भूकंप के बाद भारत के लोगों यानी हमारे शुभ चिंतकों ने हमें फेसबुक पर बहुत सारे संदेश भेजे हैं, तो आइए सबसे पहले उन पर ही क्यों ना एक नजर डाल ली जाए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो अमित गुप्ता जी लिखते हैं कि अनिश्चितताओं के क्षणों में हमें याद दिलाया जाता है कि मानवता एक परिवार है। मेरी हार्दिक प्रार्थनाएं कुमामोतो के हर व्यक्ति के साथ हैं। ईश्वर हर जीवन की रक्षा करे, हर दिल को आराम दे और इस कठिन समय का सामना कर रहे सभी परिवारों को शक्ति दे। आशा भय से ऊपर उठे, साहस हर चुनौती पर विजय प्राप्त करे और शांति जल्द ही लौटे। सभी के लिए सुरक्षा, उपचार और उज्जवल दिनों की कामना करता हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं कुमामोतो जापान के साथ हैं।
1: बहुत ही बढ़िया संदेश है, बिल्कुल दिल से निकली दुआ लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपकी प्रार्थना जरूर भगवान सुनेंगे। इनके अलावा किरण कुमार गोहिल, लाल बाबू पांडे, शेरा सिंह, तेग सिंह पनवर, सी के किंथोली, डेनी पॉल और सुनील सोमानी ने भी अफसोस जताया है।
0: आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए एक और श्रोता है उमेश कुमार शर्मा जी, वे लिखते हैं कि जापान चूंकि भूकंप क्षेत्र में है इसलिए यहाँ पर निरंतर इनका सामना यहाँ के निवासियों को करना पड़ता है, किंतु जापान सरकार की सतर्कता और यहाँ के निवासियों के सहयोग के परिणाम स्वरूप यहाँ के निवासियों के जीवन की रक्षा हो जाती है।
1: उमेश जी, आपने सही कहा कि आपदा के लिए प्रबंधन करके रखना यहाँ सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन नागरिक भी निजी स्तर पर इसके लिए तैयार तो रहते हैं। फिर भी परिस्थितियाँ कभी भी बिगड़ सकती हैं और कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनके सामने हमें नतमस्तक हो जाना पड़ता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए भूकंप के ही संदर्भ में रामकुमार नीरज जी का पत्र है और लिखते हैं कि दक्षिणी जापान में आए 7.1 की तीव्रता के भूकंप ने फिर प्रकृति की शक्ति का एहसास कराया। इतनी भीषण तीव्रता का भूकंप किसी भी देश के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे समय में जापान मौसम विज्ञान एजेंसी द्वारा तुरंत सुनामी संबंधी परामर्श जारी करना और स्थिति सामान्य होने पर उसे वापस लेना, ये दर्शाता है कि जापान की चेतावनी प्रणाली कितनी तेज, वैज्ञानिक और विश्वसनीय है।
1: बिल्कुल।
0: समाचारों से ज्ञात हुआ कि गेंकाई और सेंदाई परमाणु बिजली घरों में किसी प्रकार की असामान्यता नहीं पाई गई तथा विकिरण स्तर सामान्य रहा। 2011 की फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के बाद पूरी दुनिया की निगाहें जापान के परमाणु संयंत्रों पर रहती हैं। ऐसे में इस प्रकार की स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी लोगों का विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ रामकुमार जी, जापान ने अतीत की घटनाओं से सबक लिया है और अब तुरंत ही इस प्रकार की जानकारी प्रेषित कर दी जाती है ताकि लोगों को समय रहते सलाह जारी की जा सके।
0: जी हाँ बिल्कुल। और आगे लिखते हैं कि भूकंप के कारण क्यूशू शिंकानसेन सहित रेल सेवाओं को तत्काल रोक दिया जाना ये दर्शाता है कि जापान में मानव जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। तेज रफ्तार रेल सेवाओं को बिना किसी देरी के रोक देना यात्रियों की सुरक्षा के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है। यही सतर्कता भविष्य में बड़े हादसों को टालने में सहायक बनती है। जापान दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रभावित देशों में से एक है, फिर भी वहां की वैज्ञानिक तैयारी, आधुनिक तकनीक, मजबूत निर्माण मानक और नागरिकों का नियमित आपदा प्रशिक्षण उसे अन्य देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाता है। ये समाचार हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि केवल प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके लिए पहले से तैयार रहना अधिक आवश्यक है। इस प्रकार की समाचार प्रस्तुति न केवल जानकारी देती है, बल्कि पाठकों में जागरूकता भी बढ़ाती है। यही कारण है कि भारत सहित अनेक देशों के हिंदी श्रोता आज भी इस सेवा पर गहरा विश्वास करते हैं।
1: राम कुमार जी, जापान में रहते हुए मुझे भी धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि आपदा से निपटने का तंत्र और व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि कुछ ही दिनों में काफी हद तक जनजीवन सामान्य हो जाता है। पहले से आश्रय स्थलों को चिन्हित करके रखा जाता है, पानी की सप्लाई बंद होने पर पानी के टैंकर तुरंत आ जाते हैं, खान पीने का, शौचालय का, हर तरह का इंतजाम हो जाता है।
0: जी हाँ, वैसे रोहिणी जी, ऐसे समय में फेक न्यूज यानी झूठी जो खबरें हैं वो भी तो कितनी चलाई जाती है ना सोशल मीडिया पर, जो कि गलत जानकारी देती हैं, और इनका मकसद तो यही होता है कि लोगों में डर या चिंता का माहौल बन जाए। तो ऐसे में हमें ये भी तो सुनिश्चित करना होता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी या विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी हासिल करें।
1: यह बात आपने बहुत जरूरी की। शेर वाली एक खबर तो हमेशा चलती हाँ, रहती है
0: जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
1: कि चिड़ियाघर से शेर भाग गया है। अब तो लोग इस खबर को देखते ही पहचान जाते होंगे कि यह खबर झूठी है।
0: बिल्कुल, हमेशा चलाई जाती है, चाहे दुनिया में कहीं भी कोई भी आपदा हो, ये शेर वाली खबर तो जरूर आती है
1: जी।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बाकी के पत्र भी ले लेते हैं
1: जी।
0: तो ये है SB शर्मा जी का, और ये लिखते हैं कि पिछले रविवार को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम सुना। इस प्रोग्राम में हाथ से बने घरेलू पंखे पर चर्चा सुनी। जापान के हस्त निर्मित खूबसूरत पंखे को हम हिंदी फिल्मों में देखते आ रहे हैं, सभी सुंदर और आकर्षक लगते हैं, पर भारत में हाथ से बने घरेलू पंखों की भरमार है। हर क्षेत्र में तरह तरह के हस्त निर्मित खूबसूरत पंखे देखने को मिलते हैं। इन सभी सुंदर पंखों को मुख्यतः औरतें बनाती हैं। आजकल तो प्लास्टिक के हाथ के पंखों का प्रचलन बढ़ गया है।
1: SB शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत के अनेक हिस्सों में तरह तरह के हाथ से बने पंखे पाए जाते हैं। उनमें उस क्षेत्र की स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल होता है, डिजाइन या आकार भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। भारत में बिजली गुल होना तो आम बात है, तो इस तरह के पंखे मुझे लगता है कि सभी के घरों में होते हैं।
0: हाँ, और हमारे घरों में भी तो होते थे
1: जी।
0: और कुछ तो ऐसे होते थे ना जो 360 डिग्री घूम जाते थे,
1: बिल्कुल।
0: बस घुमा घुमा कर चारों तरफ बैठे लोगों सबको पंखा झला जा सकता था ना, और वो भी क्या दिन थे ना जब बिजली चले जाने पर बाहर आंगन में बैठ कर पंखा किया करते थे। वैसे हाथ भी दुख जाता था ना पंखा करते करते।
1: आपने तो पुरानी याद ताजा करवा दी। हाँ, जापान में बिजली तो नहीं जाती, इसलिए घर के अंदर इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन घर से बाहर निकलते समय लोग पंखे को अपने बैग में रख लेते हैं ताकि बस या ट्रेन का इंतजार करते समय उसका इस्तेमाल किया जाए। तो एक तरह से इस्तेमाल करने का समय और जगह भारत से अलग है।
0: हाँ, और देखिए घर के बाहर ही जरूरत पड़ती है ना यहाँ जापान में, क्योंकि गर्मियों में उमस इतनी ज्यादा होती है कि चाहे आप छाए में ही क्यों ना खड़े हो, पसीने से तर हो जाएंगे। वैसे आजकल तो बैटरी से चलने वाले पंखे भी काफी इस्तेमाल होते हैं, तो इन हाथ से बने पंखों का उपयोग भी घटता सा जा रहा है ना।
1: यह भी सच है। अब लेते हैं अगला पत्र जो लिखा है सुरेश अग्रवाल जी ने। कहते हैं, दिनांक 26 जुलाई के साप्ताहिक कार्यक्रम चेरी के देश से के प्रारंभ में जापान के पारंपरिक आतिशबाजी उत्सव हानाबी मात्सुरी पर प्रस्तुत जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक लगी। एक नियमित श्रोता होने के नाते हानाबी उत्सव के बारे में पहले भी अनेक बार सुन चुका हूँ, किंतु आपकी सजीव, सहज और प्रभावशाली प्रस्तुति हर बार विषय को एक नई ताजगी और आकर्षण के साथ सामने लाती है। यही आपकी प्रस्तुति की विशेषता है कि एक परिचित विषय भी नए अनुभव का एहसास कराते हैं। इस सुंदर एवं उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करें।
0: सुरेश जी, प्रस्तुति पसंद करने के लिए धन्यवाद। जी हाँ, आप इतने वर्षों से इस हिंदी सेवा से जुड़े हैं कि आपको जापान के बारे में बहुत सारी जानकारी है और एक तरह से कह सकते हैं कि आप विशेषज्ञ भी हैं। तो मैं तो अब यही चाहूंगी कि आप एक बार जापान जरूर आएं।
1: बिल्कुल।
0: और इतने वर्षों से आपने जितना कुछ जापान के बारे में सुना है, देखा है, उसे यहाँ आकर स्वयं अनुभव करें। और आजकल भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि एक दिन आपसे यहाँ टोक्यो में और हमारे स्टूडियो में मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
1: जी, उस दिन का इंतजार तो मुझे भी रहेगा, आपको घुमाने की जिम्मेदारी हमारी।
0: चलो ठीक है, ये भी अच्छा रहा। तो अब दोस्तों, समय हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो कृपया नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। वायला जी, हाल में संपन्न हुए फुटबॉल विश्व कप की तो काफी चर्चा रही। जापान में मैच का सीधा प्रसारण तो देर रात का होता था, आपने कोई मैच देखा क्या?
0: भाई, उतनी देर रात तो देखना मुश्किल था भाई। और जापान के विश्व कप की दौड़ से निकल जाने के बाद तो मेरी रुचि बहुत ही कम हो गई। पर हाँ, कुछ मैच जो जापान में सुबह के समय प्रसारित हुए ना, तो

0: देखने की कोशिश की। तो वैसे आपका कैसे गुजरा ये विश्व कप का दौर?
1: हाँ, मैंने भी काफी मैच देखे और इस दौरान मुझे तो कुछ अभूतपूर्व अनुभव हुआ
0: अच्छा, ऐसा हुआ?
1: जी। तो उसके बारे में बताती हूँ। तो हमारी बिटिया एक फुटबॉल क्लब का हिस्सा है, तकरीबन 1 साल से क्लब के अभ्यास और प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही है। हमें यह लगता था कि अभिभावक की तरह हमारा काम उसे समय पर पहुंचाना और उसकी टीम का हौसला बढ़ाना है।
0: मतलब लगता था, मतलब तो इसका मतलब कि कुछ बदलाव देखा आपने या कोई नई मुसीबत आ गई क्या आपके सामने?
1: अब इसे मुसीबत बोलूं या कुछ और, चलिए वो आप बताइएगा।
0: ठीक है।
1: तो मार्च के महीने में पता चला कि हमारे शहर के सभी फुटबॉल क्लबों के बीच एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें बच्चों के साथ साथ उनकी माओं को भी खेलना पड़ता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मैंने पहले तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे जापानी भाषा थोड़ी बहुत ही आती है और कभी फुटबॉल खेला भी नहीं था। फिर धीरे धीरे इस सोच में पड़ गई कि अगर हिस्सा नहीं लिया तो शायद मेरी बेटी को अच्छा न लगे, बहुत ही दुविधा में थी मैं।
0: अच्छा, तो ये असमंजस तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। मैंने बहुत से विदेशियों से इस दुविधा के बारे में सुना है। बहुत सारे लोग ऐसे तरह तरह के आयोजनों में हिस्सा लेने और ना लेने की कशमकश में रहते हैं। और सच बताऊं तो स्कूल, ऐसे क्लब या अन्य सामूहिक आयोजनों में हिस्सा लेने का निर्णय उनके लिए ज्यादातर अच्छा ही रहता है। जिस अपनेपन से लोग मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं, उसमें भी तो मजा आता ही है ना?
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह की दुविधा और बाद में कुछ नया करने का प्रण हम प्रवासियों के जीवन का एक अनोखा हिस्सा है। तो थोड़े समय की कश्मकश के बाद मैंने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की ठान ली।
0: अच्छा।
1: जी, मुझे लगा कि जिस दिन प्रतियोगिता होगी उससे एक दिन पहले थोड़ी बहुत तैयारी की जाएगी और अगले दिन जाकर खेलना होगा।
0: तो क्या यही क्रम रहा अभ्यास और प्रतियोगिता का? वैसे मैं अपने अनुभव से ये तो बता सकती हूँ कि यहाँ जापान में सिर्फ एक दिन का अभ्यास तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। कोई
1: जी
0: भी काम हो, छोटा बड़ा, किसी को भी अंजाम देने से पहले यहाँ के लोग इसकी तैयारी में अपना पूरा समर्पण देने में विश्वास रखते हैं।
1: यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो मार्च के शुरुआत से ही बच्चों के साथ साथ हमारा भी अभ्यास शुरू हुआ।
0: अच्छा।
1: जी, सप्ताह में 2 दिन 3-3 घंटे का अभ्यास। उस क्लब से जुड़े कई लोगों ने आकर जरूरी गुर भी सिखाए, कई सारे अभ्यास मैच भी खेलने पड़े। अभ्यास के दौरान सारे बच्चे अपनी माओ को किक मारना, गोल करना, ड्रिबल करना सिखा रहे थे। यह बहुत अनूठा अनुभव था। हम माएं जो बच्चों को कई सारी चीजें सिखाते रहते हैं, अभी उनसे सीखने का मौका मिल रहा
0: ये भी खूब रहे।
1: था। तो एक अभ्यास मैच हुआ बच्चों और उनकी माओ के बीच में। उसमें हमारी टीम आगे चल रही थी और हर एक गोल के बाद वही बच्चे जो कुछ देर पहले हमारे गुरु बने हुए थे रोने लग गए, नाराज होने लग गए।
0: अरे
1: देखा जाए तो बहुत ही मामूली सी बात है, पर गौर से सोचे तो हम उम्र के साथ ही समझ पाते हैं ना कि अगर हमारे शागिर्द कुछ अच्छा करें तो उसमें वाहवाही तो हमारी ही है। तो यहाँ माँ जो हमेशा अपने सुख को बच्चों के लिए त्याग करती है, उनके हाथों होने वाली हार ने सारे बच्चों को झकझोर दिया था।
0: अच्छा।
1: अभ्यास सत्र खत्म होने के बाद क्लब के कोच ने इस सब को समझाया कि अभ्यास सत्र के दौरान अपने दोस्त, माँ या किसी करीबी से उम्मीद रखना कि वह आपको खुश करने के लिए खराब खेलेंगे यह एक खिलाड़ी की पहचान बिल्कुल भी नहीं है और सबको इसका ध्यान रखना चाहिए।
0: ये तो खेल खेल में बहुत बड़ी सीख मिल गई बच्चों को।
1: बिल्कुल
0: बच्चों और माओं के एक साथ मैदान में उतरने से सीखने की संभावनाएं तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, अब ये बताइए कि प्रतियोगिता में हुआ क्या?
1: हाँ, तो हमारी टीम 2रे नंबर पर आई।
0: अच्छा।
1: हाँ, सब लोग काफी तैयारी के साथ आए थे और हर टीम एक दूसरे का काफी हौसला बढ़ा रही थी। मैच के पहले हिस्से में माएं एक दूसरे से भिड़ती थीं और दूसरे हिस्से में बच्चे। फुटबॉल की तकनीकी जानकारी के साथ साथ आपसी तालमेल भी बहुत जरूरी रहा मैच खेलने के लिए। अभ्यास के दौरान माँ के गोल मारने से दुखी होने वाले बच्चे जोर शोर से माओ का हौसला बढ़ा रहे थे।
0: अच्छा, तो ये परिवर्तन भी मैच में ही हो
1: मिल गया, देखने को
0: गया।
1: मिल गया। दर्शक दीर्घा में हर टीम के परिवार और दोस्तों की भी भीड़ थी और वो भी बहुत हौसला बढ़ा रहे थे और एक तरह से बहुत ही अद्भुत और खुशनुमा माहौल था इस प्रतियोगिता का।
0: बहुत बढ़िया।
1: मेरे लिए तो इसमें भाग लेकर खुद मेहनत करके सीखना बहुत ही उपयोगी भी रहा। मेरी बेटी की कितनी मेहनत जाती है हर अभ्यास सत्र में और हर मैच उसके लिए कितना मुश्किल होता है और हमारे हौसले की उसे कितनी ज्यादा जरूरत है, यह बिना भाग लिए मैं शायद ही जान पाती।
0: वो तो है।
1: हाँ, और एक और अच्छी बात हुई, नई जान पहचान भी हुई, तो उसे तो मैं सोने पे सुहागा की तरह देख रही हूँ। तो मिला जुला के यह रहा मेरा फुटबॉल विश्व कप के दौरान फुटबॉल को खेलना और समझना।
0: ये भी खूब रहा। चलिए, दूसरे स्थान पर आने के लिए आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई।
1: शुक्रिया।
0: और देखिए, जापान में चाहे स्कूल की पीटीए हो या खेल के क्लब, माता पिता की भागीदारी, समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना और उसके लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन करना बहुत ही सराहनीय है। और मैं तो खुद भी पीटीए में रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है।
1: अच्छा।
0: कि इस तरह का होता है।
1: मित्रों, अगर आपने भी ऐसी ही अनोखी प्रतियोगिता कभी सुनी या देखी हो तो पत्र लिखकर हमसे जरूर साझा करें।
0: जी हाँ दोस्तों, और देखिए, बातों बातों में अब समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमें पत्र लिखते रहें। अगर पत्र लिखना एक झंझट है तो फेसबुक पर अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। आपके पत्रों की हमें हमेशा प्रतीक्षा रहती है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का कार्यक्रम, लेकिन फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला कवानों को,
1: रोहिणी रमन को। सायोनारा, नमस्कार।

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें, आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, सोफिया जमशेद और वसीमा आबिद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। जी सामईन, आज हमने जापान के मौसम गर्मा के मेलों यानी नत्सु मत्सुरी से हमारी महफिल को शुरू करना था, लेकिन मंगल को जनूबी जापान के कुमामोतो प्रिफेक्चर और उसके आसपास आए जलजले के बायस आज का प्रोग्राम जलजला जदगान के जिक्र से शुरू करेंगे।
2: जी, बहुत शदीद जलजला था जिसका मैग्नीट्यूड 7.1 था।
1: इस जलजले के नतीजे में कई अफराद हलाक और जख्मी भी हो गए हैं।
2: इस कुदरती आफत में हलाक होने वालों के लिए दुआगो हैं, खुदा उनके लवाहिकीन को सब्र दे और जख्मी होने वालों को अल्लाह पाक जल्द अज जल्द सेहतियाब करे।
0: आमीन। खलील साहब, वहाँ रहने वाले पाक हिंद के रहायशियों के बारे में कुछ मालूमात होंगी आपके पास?
1: जी, मुझे पता था कि आप ये ज़रूर पूछेंगी, इसलिए मैंने 30 जुलाई को वहाँ मुकीम कुछ पाकिस्तानियों से बातचीत की है। सुनना चाहेंगी?
2: जी जी ज़रूर, हम दोनों बल्कि सामईन भी सुनना चाहेंगे।
1: तो सुनिए, आप मेरे ख्याल में आप जब जलजला आया उस वक्त कुमामोतो शहर में मौजूद थे, तो कुछ अपने तजुर्बात, अपने एहसासात हमारे साथ शेयर कीजिए। जब जलजला आया उस वक्त आप कहाँ थे और आपने क्या देखा, क्या महसूस किया?
3: मैं जॉब से फ्री होके घर में आया था, सोफे पे बैठा था, वाइफ के साथ खाना खाने लगा था, तो एकदम बहुत ज्यादा इसके शॉक के साथ ना घर शेक करने लग गया था। बिल्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शेकिंग में चली गई थी, तो मेरे साथ हुआ ये जलजला। पहले तो हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था उसकी वेव्स की वजह से,
1: अच्छा
3: चेकिंग की वजह से। फिर किसी तरह हिम्मत करके हम बाहर निकले हैं, दरवाजा खोला है तो बाहर देखा बिल्डिंग बहुत जोर जोर से ना हिल रही थी।
1: अच्छा,
3: तो हिल रही थी तो हम भाग गए नीचे, मैं और वाइफ थे। नीचे जाके हम 5-10 मिनट वहाँ खुद को हौसला किया, हमें समझ नहीं आ रहे थे क्योंकि शॉक की स्टेट थी।
1: अच्छा,
3: तो साथ हमारे जो रेजिडेंट्स रहते हैं, क्योंकि ये सारी हाउसिंग बिल्डिंग्स है ना जहाँ हम रहते हैं,
1: ठीक,
3: तो सारे रेजिडेंट्स जो आसपास रहने वाले हैं वो भी उसको बाहर निकल आए थे।
1: अच्छा,
3: तो बाहर निकलने के बाद सब लोग 10-15 मिनट बाहर रहे थे। उसके बाद जब 10-15 मिनट खुद को रिलैक्स करके मैं और वाइफ ऊपर कमरे में, सारा सामान गिरा पड़ा था। एक फैन था हमारा, वो नीचे गिर के टूट गया था। ड्रेसिंग टेबल नीचे गिर गया था। फ्रिज खुल कर उसके अंदर से सामान बाहर

किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला खवानो का कोन्निचिवा नमस्कार।
1: आवाज की दुनिया के सभी साथियों को रोहिणी रमन का भी प्यार भरा नमस्कार और कोन्निचिवा। लेकर हाजिर हैं आपके पत्रों के जवाब।
0: रोहिणी जी, देखिए अभी मंगलवार को जापान एक बार फिर महाभूकंप की चपेट में आ गया ना?
1: हाँ वायला जी, जापान में रहते हुए हमें कई बार भूकंप के झटकों को झेलना पड़ता है, लेकिन अगर इतनी अधिक तीव्रता का भूकंप आ जाए तो इसके लिए तैयारी करके रखना तो ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से इससे उबर पाना कठिन हो जाता है।
0: जी हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। और जब तक ऐसी कोई स्थिति हमारे सामने नहीं आती, तब तक हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि भूकंप ग्रस्त इलाकों के लोगों पर क्या गुजर रही होगी। हमारी तो बस यही प्रार्थना है कि अब और जानमाल का नुकसान ना हो और सभी की दिनचर्या वापस पटरी पर लौट आए।
1: जी, और अगर हमारी तरफ से कोई सहायता या योगदान हो सकता है तो हम भी मदद का हाथ आगे बढ़ाकर आपदा के शिकार लोगों का काम आए।
0: जी हाँ, और देखिए रोहिणी जी, भूकंप के बाद भारत के लोगों यानी हमारे शुभ चिंतकों ने हमें फेसबुक पर बहुत सारे संदेश भेजे हैं, तो आइए सबसे पहले उन पर ही क्यों ना एक नजर डाल ली जाए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो अमित गुप्ता जी लिखते हैं कि अनिश्चितताओं के क्षणों में हमें याद दिलाया जाता है कि मानवता एक परिवार है। मेरी हार्दिक प्रार्थनाएं कुमामोतो के हर व्यक्ति के साथ हैं। ईश्वर हर जीवन की रक्षा करे, हर दिल को आराम दे और इस कठिन समय का सामना कर रहे सभी परिवारों को शक्ति दे। आशा भय से ऊपर उठे, साहस हर चुनौती पर विजय प्राप्त करे और शांति जल्द ही लौटे। सभी के लिए सुरक्षा, उपचार और उज्जवल दिनों की कामना करता हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं कुमामोतो जापान के साथ हैं।
1: बहुत ही बढ़िया संदेश है, बिल्कुल दिल से निकली दुआ लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपकी प्रार्थना जरूर भगवान सुनेंगे। इनके अलावा किरण कुमार गोहिल, लाल बाबू पांडे, शेरा सिंह, तेग सिंह पनवर, सी के किंथोली, डेनी पॉल और सुनील सुमानी ने भी अफसोस जताया है।
0: आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए एक और श्रोता है उमेश कुमार शर्मा जी, वे लिखते हैं कि जापान चूंकि भूकंप क्षेत्र में है इसलिए यहाँ पर निरंतर इनका सामना यहाँ के निवासियों को करना पड़ता है, किंतु जापान सरकार की सतर्कता और यहाँ के निवासियों के सहयोग के परिणाम स्वरूप यहाँ के निवासियों के जीवन की रक्षा हो जाती है।
1: उमेश जी, आपने सही कहा कि आपदा के लिए प्रबंधन करके रखना यहाँ सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन नागरिक भी निजी स्तर पर इसके लिए तैयार तो रहते हैं। फिर भी परिस्थितियाँ कभी भी बिगड़ सकती हैं और कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनके सामने हमें नतमस्तक हो जाना पड़ता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए भूकंप के ही संदर्भ में रामकुमार नीरज जी का पत्र है और लिखते हैं कि दक्षिणी जापान में आए 7.1 की तीव्रता के भूकंप ने फिर प्रकृति की शक्ति का एहसास कराया। इतनी भीषण तीव्रता का भूकंप किसी भी देश के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे समय में जापान मौसम विज्ञान एजेंसी द्वारा तुरंत सुनामी संबंधी परामर्श जारी करना और स्थिति सामान्य होने पर उसे वापस लेना, ये दर्शाता है कि जापान की चेतावनी प्रणाली कितनी तेज, वैज्ञानिक और विश्वसनीय है।
1: बिल्कुल।
0: समाचारों से ज्ञात हुआ कि गेंकाई और सेंदाई परमाणु बिजली घरों में किसी प्रकार की असामान्यता नहीं पाई गई तथा विकिरण स्तर सामान्य रहा। 2011 की फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के बाद पूरी दुनिया की निगाहें जापान के परमाणु संयंत्रों पर रहती हैं। ऐसे में इस प्रकार की स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी लोगों का विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ रामकुमार जी, जापान ने अतीत की घटनाओं से सबक लिया है और अब तुरंत ही इस प्रकार की जानकारी प्रेषित कर दी जाती है ताकि लोगों को समय रहते सलाह जारी की जा सके।
0: जी हाँ बिल्कुल। और आगे लिखते हैं कि भूकंप के कारण क्यूशू शिंकानसेन सहित रेल सेवाओं को तत्काल रोक दिया जाना ये दर्शाता है कि जापान में मानव जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। तेज रफ्तार रेल सेवाओं को बिना किसी देरी के रोक देना यात्रियों की सुरक्षा के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है। यही सतर्कता भविष्य में बड़े हादसों को टालने में सहायक बनती है। जापान दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रभावित देशों में से एक है, फिर भी वहां की वैज्ञानिक तैयारी, आधुनिक तकनीक, मजबूत निर्माण मानक और नागरिकों का नियमित आपदा प्रशिक्षण उसे अन्य देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाता है। ये समाचार हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि केवल प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके लिए पहले से तैयार रहना अधिक आवश्यक है। इस प्रकार की समाचार प्रस्तुति न केवल जानकारी देती है, बल्कि पाठकों में जागरूकता भी बढ़ाती है। यही कारण है कि भारत सहित अनेक देशों के हिंदी श्रोता आज भी इस सेवा पर गहरा विश्वास करते हैं।
1: राम कुमार जी, जापान में रहते हुए मुझे भी धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि आपदा से निपटने का तंत्र और व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि कुछ ही दिनों में काफी हद तक जनजीवन सामान्य हो जाता है। पहले से आश्रय स्थलों को चिन्हित करके रखा जाता है, पानी की सप्लाई बंद होने पर पानी के टैंकर तुरंत आ जाते हैं, खान पीने का, शौचालय का, हर तरह का इंतजाम हो जाता है।
0: जी हाँ, वैसे रोहिणी जी, ऐसे समय में फेक न्यूज यानी झूठी जो खबरें हैं वो भी तो कितनी चलाई जाती है ना सोशल मीडिया पर, जो कि गलत जानकारी देती हैं, और इनका मकसद तो यही होता है कि लोगों में डर या चिंता का माहौल बन जाए। तो ऐसे में हमें ये भी तो सुनिश्चित करना होता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी या विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी हासिल करें।
1: यह बात आपने बहुत जरूरी की। शेर वाली एक खबर तो हमेशा चलती रहती है
0: जी,
1: कि चिड़ियाघर से शेर भाग गया है। अब तो लोग इस खबर को देखते ही पहचान जाते होंगे कि यह खबर झूठी है।
0: बिल्कुल, हमेशा चलाई जाती, चाहे दुनिया में कहीं भी कोई भी आपदा हो, ये शेर वाली खबर तो जरूर आती है
1: जी।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बाकी के पत्र भी ले लेते हैं
1: जी।
0: तो ये है SB शर्मा जी का, और ये लिखते हैं कि पिछले रविवार को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम सुना। इस प्रोग्राम में हाथ से बने घरेलू पंखे पर चर्चा सुनी। जापान के हस्त निर्मित खूबसूरत पंखे को हम हिंदी फिल्मों में देखते आ रहे हैं, सभी सुंदर और आकर्षक लगते हैं, पर भारत में हाथ से बने घरेलू पंखों की भरमार है। हर क्षेत्र में तरह तरह के हस्त निर्मित खूबसूरत पंखे देखने को मिलते हैं। इन सभी सुंदर पंखों को मुख्यतः औरतें बनाती हैं। आजकल तो प्लास्टिक के हाथ के पंखों का प्रचलन बढ़ गया है।
1: SB शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत के अनेक हिस्सों में तरह तरह के हाथ से बने पंखे पाए जाते हैं। उनमें उस क्षेत्र की स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल होता है, डिजाइन या आकार भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। भारत में बिजली गुल होना तो आम बात है, तो इस तरह के पंखे मुझे लगता है कि सभी के घरों में होते हैं।
0: हाँ, और हमारे घरों में भी तो होते थे
1: जी।
0: और कुछ तो ऐसे होते थे ना जो 360 डिग्री घूम जाते थे,
1: बिल्कुल
0: बस घुमा घुमा कर चारों तरफ बैठे लोगों सबको पंखा झला जा सकता था ना। और वो भी क्या दिन थे ना जब बिजली चले जाने पर बाहर आंगन में बैठकर पंखा किया करते थे। वैसे हाथ भी दुख जाता था ना पंखा करते करते।
1: आपने तो पुरानी याद ताजा करवा दी। हाँ, जापान में बिजली तो नहीं जाती, इसलिए घर के अंदर इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन घर से बाहर निकलते समय लोग पंखे को अपने बैग में रख लेते हैं ताकि बस या ट्रेन का इंतजार करते समय उसका इस्तेमाल किया जाए। तो एक तरह से इस्तेमाल करने का समय और जगह भारत से अलग है।
0: हाँ, और देखिए घर के बाहर ही जरूरत पड़ती है ना या जापान में, क्योंकि गर्मियों में उमस इतनी ज्यादा होती है कि चाहे आप छाए में ही क्यों ना खड़े हो, पसीने से तर हो जाएंगे।

0: वैसे आजकल तो बैटरी से चलने वाले पंखे भी काफी इस्तेमाल होते हैं, तो इन हाथ से बने पंखों का उपयोग भी घटता सा जा रहा है ना।
1: ये भी सच है। अब लेते हैं अगला पत्र जो लिखा है सुरेश अग्रवाल जी ने। कहते हैं, दिनांक 26 जुलाई के साप्ताहिक कार्यक्रम चेरी के देश से के प्रारंभ में जापान के पारंपरिक आतिशबाजी उत्सव हानाबी मात्सुरी पर प्रस्तुत जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक लगी। एक नियमित श्रोता होने के नाते हानाबी उत्सव के बारे में पहले भी अनेक बार सुन चुका हूँ, किंतु आपकी सजीव, सहज और प्रभावशाली प्रस्तुति हर बार विषय को एक नई ताजगी और आकर्षण के साथ सामने लाती है। यही आपकी प्रस्तुति की विशेषता है कि एक परिचित विषय भी नए अनुभव का एहसास कराते हैं। इस सुंदर एवं उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करें।
0: सुरेश जी, प्रस्तुति पसंद करने के लिए धन्यवाद। जी हाँ, आप इतने वर्षों से इस हिंदी सेवा से जुड़े हैं कि आपको जापान के बारे में बहुत सारी जानकारी है और एक तरह से कह सकते हैं कि आप विशेषज्ञ भी हैं। तो मैं तो अब यही चाहूंगी कि आप एक बार जापान जरूर आएं।
1: बिल्कुल।
0: और इतने वर्षों से आपने जितना कुछ जापान के बारे में सुना है, देखा है, उसे यहाँ आकर स्वयं अनुभव करें। और आजकल भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि एक दिन आपसे यहाँ टोक्यो में और हमारे स्टूडियो में मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
1: जी, उस दिन का इंतजार तो मुझे भी रहेगा, आपको घुमाने की जिम्मेदारी हमारी।
0: चलो ठीक है, ये भी अच्छा रहा। तो अब दोस्तों, समय हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो कृपया नोट कर लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। वायला जी, हाल में संपन्न हुए फुटबॉल विश्व कप की तो काफी चर्चा रही। जापान में मैच का सीधा प्रसारण तो देर रात का होता था, आपने कोई मैच देखा क्या?
0: भाई, उतनी देर रात तो देखना मुश्किल था भाई। और जापान के विश्व कप की दौड़ से निकल जाने के बाद तो मेरी रुचि बहुत ही कम हो गई। पर हाँ, कुछ मैच जो जापान में सुबह के समय प्रसारित हुए ना, तो उन्हें देखने की कोशिश की। तो वैसे आपका कैसे गुजरा ये विश्व कप का दौर?
1: हाँ, मैंने भी काफी मैच देखे और इस दौरान मुझे तो कुछ अभूतपूर्व अनुभव हुआ।
0: अच्छा, ऐसा
1: जी?
0: हुआ?
1: तो उसके बारे में बताती हूँ। तो हमारी बिटिया एक फुटबॉल क्लब का हिस्सा है, तकरीबन एक साल से क्लब के अभ्यास और प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही है। हमें यह लगता था कि अभिभावक की तरह हमारा काम उसे समय पर पहुंचाना और उसकी टीम का हौसला बढ़ाना है।
0: मतलब लगता था, मतलब तो इसका मतलब कि कुछ बदलाव देखा आपने या कोई नई मुसीबत आ गई क्या आपके सामने?
1: अब इसे मुसीबत बोलूं या कुछ और, चलिए वो आप बताइएगा।
0: ठीक है,
1: तो मार्च के महीने में पता चला कि हमारे शहर के सभी फुटबॉल क्लबों के बीच एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें बच्चों के साथ साथ उनकी माओ को भी खेलना पड़ता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मैंने पहले तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे जापानी भाषा थोड़ी बहुत ही आती है और कभी फुटबॉल खेला भी नहीं था। फिर धीरे धीरे इस सोच में पड़ गई कि अगर हिस्सा नहीं लिया तो शायद मेरी बेटी को अच्छा न लगे, बहुत ही दुविधा में थी मैं।
0: अच्छा, तो ये असमंजस तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। मैंने बहुत से विदेशियों से इस दुविधा के बारे में सुना है। बहुत सारे लोग ऐसे तरह तरह के आयोजनों में हिस्सा लेने और न लेने की कश्मकश में रहते हैं। और सच बताऊं तो स्कूल, ऐसे क्लब या अन्य सामूहिक आयोजनों में हिस्सा लेने का निर्णय उनके लिए ज्यादातर अच्छा ही रहता है। जिस अपनेपन से लोग मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं, उसमें भी तो मजा आता ही है ना?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह की दुविधा और बाद में कुछ नया करने का प्रण हम प्रवासियों के जीवन का एक अनोखा हिस्सा है। तो थोड़े समय की कश्मकश के बाद मैंने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की ठान ली।
0: अच्छा
1: जी, मुझे लगा कि जिस दिन प्रतियोगिता होगी उससे एक दिन पहले थोड़ी बहुत तैयारी की जाएगी और अगले दिन जाकर खेलना होगा।
0: तो क्या यही क्रम रहा अभ्यास और प्रतियोगिता का? वैसे मैं अपने अनुभव से ये तो बता सकती हूँ कि यहाँ जापान में सिर्फ एक दिन का अभ्यास तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। कोई भी काम हो, छोटा बड़ा, किसी को भी अंजाम देने से पहले यहाँ के लोग इसकी तैयारी में अपना पूरा

0: तरह समर्पण देने में विश्वास रखते हैं।
1: यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो मार्च के शुरुआत से ही बच्चों के साथ साथ हमारा भी अभ्यास शुरू हुआ।
0: अच्छा
1: जी, सप्ताह में 2 दिन 3-3 घंटे का अभ्यास। उस क्लब से जुड़े कई लोगों ने आकर जरूरी गुर भी सिखाए, कई सारे अभ्यास मैच भी खेलने पड़े। अभ्यास के दौरान सारे बच्चे अपनी माओं को किक मारना, गोल करना, ड्रिबल करना सिखा रहे थे। यह बहुत अनूठा अनुभव था। हम माएँ जो बच्चों को कई सारी चीज़ें सिखाते रहते हैं, अभी उनसे सीखने का मौका मिल रहा था।
0: ये भी खूब रहा।
1: तो एक अभ्यास मैच हुआ बच्चों और उनकी माओं के बीच में। उसमें हमारी टीम आगे चल रही थी और हर एक गोल के बाद वही बच्चे जो कुछ देर पहले हमारे गुरु बने हुए थे रोने लग गए, नाराज होने लग गए। देखा जाए तो बहुत ही मामूली सी बात है, पर गौर से सोचे तो हम उम्र के साथ ही समझ पाते हैं ना कि अगर हमारे शागिर्द कुछ अच्छा करें तो उसमें वाहवाही तो हमारी ही है। तो यहाँ माँ जो हमेशा अपने सुख को बच्चों के लिए त्याग करती है, उनके हाथों होने वाली हार ने सारे बच्चों को झकझोर दिया था।
0: अच्छा।
1: अभ्यास सत्र खत्म होने के बाद क्लब के कोच ने इस सब को समझाया कि अभ्यास सत्र के दौरान अपने दोस्त, माँ या किसी करीबी से उम्मीद रखना कि वह आपको खुश करने के लिए खराब खेलेंगे या एक खिलाड़ी की पहचान बिल्कुल भी नहीं है और सबको इसका ध्यान रखना चाहिए।
0: ये तो खेल खेल में बहुत बड़ी सीख मिल गई बच्चों को।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों और माओं के एक साथ मैदान में उतरने से सीखने की संभावनाएं तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, अब ये बताइए कि प्रतियोगिता में हुआ क्या?
1: हाँ, तो हमारी टीम दूसरे नंबर पर आई।
0: अच्छा।
1: हाँ, सब लोग काफी तैयारी के साथ आए थे और हर टीम एक दूसरे का काफी हौसला बढ़ा रही थी। मैच के पहले हिस्से में माएँ एक दूसरे से भिड़ती थी और दूसरे हिस्से में बच्चे। फुटबॉल की तकनीकी जानकारी के साथ साथ आपसी तालमेल भी बहुत जरूरी रहा मैच खेलने के लिए। अभ्यास के दौरान माँ के गोल मारने से दुखी होने वाले बच्चे जोर शोर से माओं का हौसला बढ़ा रहे थे।
0: अच्छा, तो ये परिवर्तन भी मैच में हो गया।
1: मिल गया, देखने को मिल गया। दर्शक दीर्घा में हर टीम के परिवार और दोस्तों की भी भीड़ थी और वो भी बहुत हौसला बढ़ा रहे थे और एक तरह से बहुत ही अद्भुत और खुशनुमा माहौल था इस प्रतियोगिता का।
0: बहुत बढ़िया।
1: मेरे लिए तो इसमें भाग लेकर खुद मेहनत करके सीखना बहुत ही उपयोगी भी रहा। मेरी बेटी की कितनी मेहनत जाती है हर अभ्यास सत्र में और हर मैच उसके लिए कितना मुश्किल होता है और हमारे हौसले की उसे कितनी ज्यादा जरूरत है, यह बिना भाग लिए मैं शायद ही जान पाती।
0: वो तो है।
1: हाँ, और एक और अच्छी बात हुई, नई जान पहचान भी हुई, तो उसे तो मैं सोने पे सुहागा की तरह देख रही हूँ। तो मिला जुला के यह रहा मेरा फुटबॉल विश्व कप के दौरान फुटबॉल को खेलना और समझना।
0: ये भी खूब रहा। चलिए, दूसरे स्थान पर आने के लिए आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई।
1: शुक्रिया।
0: और देखिए, जापान में चाहे स्कूल की पीटीए हो या खेल के क्लब, माता पिता की भागीदारी, समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना और उसके लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन करना बहुत ही सराहनीय है। और मैं तो खुद भी पीटीए में रह चुकी हूँ तो मुझे पता है।
1: अच्छा।
0: कि इस तरह का होता है।
1: मित्रों, अगर आपने भी ऐसी ही अनोखी प्रतियोगिता कभी सुनी या देखी हो तो पत्र लिखकर हमसे जरूर साझा करें।
0: जी हाँ दोस्तों, और देखिए, बातों बातों में अब समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमें पत्र लिखते रहें। अगर पत्र लिखना एक झंझट है तो फेसबुक पर अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। आपके पत्रों की हमें हमेशा प्रतीक्षा रहती है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का कार्यक्रम, लेकिन फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दें वायला कवानों को,
1: रोहिणी रमन को सायोनारा, नमस्कार।

9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज पर सुनी जा सकती हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu। उर्दू नशरियात का आगाज हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा।